मंगलुरत्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे ओं गं गणपतये नमः भूसाक्षी दीपम प्रिपेयर द डिवाइन गॉडेस As Mahalakshmi will be the Sakshi, the witness, the worship.

स्तुते भूसाक्षी दीपम अहम करिष्ये पुंडरीकांक्ष पुनातु प्रिपेयर फॉर प्यूरिफिकेशन ओम आ पवित्र पवित्रमा सर्ववस्तम गटोपिवं यस्मरेत पुंडरीकांक्ष स्वाहं तरसुचे. Taking grains in our hands, we worship Lord Ganesh.